0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: ये है रेडियो दिलबर आपकी दिल की आवाज
3: सर्दी हो या गर्मी रेडियो दिलबर आपके संग संग।
4: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
5: ये रेडियो दिलबर स्वाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।